0: juga Mela ya. Udi dan juga Abi Jane. Udi akan juga Abi Jane ya. Uji Rabane Banaya. Terima kasih semua dekat 30K dan taping. Terima kasih dekat Kemang Putra. Selamat berhujung minggu semua ya. Nur, assalamualaikum Kak Lee. Waalaikumsalam. Ada filem Bobby dah masuk. Bobby dah masuk ni. Peletum, peletum. Bukan cibu semuanya malam ni.
1: मुझे भी कुछ कहना है
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
2: कहती हूँ